आम इंसान की जिंदगी एक गल कहन का मौका शायद कभी नहीं आता। इंसान ये कह सकता है कि मैं अपना घर बदल लिया, मैं अपनी मोटर बदल ली है, मैं कंट्री बदल ली है, मैं अपना नाम बदल लिया, लेकिन ये गल शायद ही कोई इंसान अभी कहना सुनया हो गए तो मैं अपनी अकल बदल ली है, मेरी अकल बदल गई। कबीर जी कहते हैं गुरु प्रसाद गुरु की कृपा के नाल मेरी अकल बदल गई, मेरी मत बदल गई, नवे किस्म की मैनु मत प्राप्त हुई है। कहते उदय अष्ट की मन बुद्ध नाथी, कहते जन्म मरण के गेड़ दे विच पाउण वाली ये मेरी मत ही सी, ये कहते मत गई है। तो गुरु प्रसाद गुरु की कृपा के नाल मैनु गुरु तो नवे किस्म की मत मिली है, जिस दे नाल कहते मैं बदल गया। जो इंसान की मत बदलती है उदों ही इंसान बदलता है, जो अकल बदलती है उदों ही इंसान बदलता है। इंसान ने सारा जोर लाया होया है अपने कपड़े बदलन पे, फैशन इंडस्ट्री की कर दी है यही कर दी है। इंसान ने सारा जोर लाया होया है अपनी बाहर बाहर दी चीजा बदलन देते, लेकिन मत वही पुराने की पुरानी रहेगी, संस्कार वही जो वही रहेंगे, उसमें कोई बदलना नहीं। गुरु बाबा जी ने फिर आख्या है कहते मेरी मत बदल गई। तो अब देखिए पिंड स्नेहा की मिल रहा है कि जो साढ़े पास मत है वो मत नहीं है, वो सियाणप नहीं है। पर हम इतने एक सवाल पैदा होंगे, तो सवाल का जवाब देते तो बिना कीर्तन जो है वो संपूर्ण नहीं हो। सवाल इतने पैदा होंगे है कि जी सा मत न महाराज कह रहे हम छड़ दो कि ये मत नहीं है, क्यों नहीं मत, ये मत क्यों नहीं। अगर कोई बंदा क्वेश्चन करे कि ये मत है क्यों नहीं, तो फिर उसका कि किन्हें जवाब देंगे।

ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਖੂਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਮਾਮ ਅਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੀ ਓਰਿਜਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਆਹ ਹੁਣ ਪੰਕਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝੇ ਆਪਣਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆ ਚ ਢੋਰ ਦੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਆਪਣੀ ਓਰਿਜਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਅਤੇ ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਹਨ। ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝੇ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸ਼ੂਆ ਚ ਢੋਰ ਦੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਸਾਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਪਛਾਣੋ ਤਾਂ ਕਹੋ ਜਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਹਿਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬਨ ਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੇਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਬਹੁਤ ਮੱਧ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਾਹ ਜੈਸੇ ਖਾਈ, ਕੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣੋ ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਟੇ ਨਾ ਪਰਮ ਕੀ ਸਾਈ। ਇਹ ਪਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵ ਹੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅਤੇ ਸਮਝੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰੈਜਡੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰੈਜਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇੰਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਿਖਾਲਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਬੋਲੋ, ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਬੋਲੋ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਬੋਲੋ।
महाराज जी बाबा जी थां थां ते कहंदे हन मरना याद रखी। ब्रिदा मंडप माल न लाए, अपना चित मन इन्हां मंडपां नाल इस दुनियादारी दे माल नाल ना लगा। की कर मर्ग सतानी चित कर, मर्ग सतानी, सतानी का भाव बहुत शक्तिशाली, मर्ग माने मृत्यु, मृत्यु जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, उन चित कर उन याद दे विच रख, चित दे विच रख। गुरु महाराज जी बाणी च आखदे हन कि तृष्णा वड्डा रोग लगा, साथ संगत ध्यान अपना फोकस करके रखो, क्योंकि मैं कहना आप जी कीर्तन सुनने के बाद घर जाओ तो जा गलबात करो, क्योंकि सुन के आए हाँ फिर उसमें बैठ के विचारो, उसका कोई नोट भी लाओ, ताकि ना दसा दिन के असं कुछ अचीव करना। बाबा जी बाणी चाहते हैं कि कितना वड्डा रोग लगा, मरण मनोविकार, मरना मनोविकार दिता, खाना पीना हसना सौना विसर गया है, मरना कहते उसने मरना बिल्कुल विसर गया, मरना बिल्कुल विसर गया, इसने मरना भी कहते मरना याद रखो। गुरु बाबा जी अपनी बाणी के आखते हैं मौत में याद रखो, कहते हैं मत्ती मरण विसारे, एक दुनियावी वस्तुओं के विच मत्ती मैंने मस्त हुई हुई, इस जीव जिंदड़ी ने इस मत ने की कीता है, मरना मनो विसार है, मत्ती मरण विसार है, खुशी खुशी दिन चार चार एक दिन की खुशी की, इसने बिल्कुल ही भुला दिता कि आ जिहड़ा मेरा जीवन है ये तो एक बुलबुले तो ज्यादा वध के अहमियत नहीं रखता। जैसे जलते बुदबुदा उपजे दिल से मीत, जब रचना कैसे रची कौ नानक संगीत। असि इस पानी देते जो बुलबुला होंदा है उस तो वध के कुछ नहीं है। कई बंदे कह देंगे हम यू डोंट नो मी, हम कई बंदे ये गल कह रहे हैं कि तुहानू मेरा पता नहीं है, यू डोंट नो मी। महाराज जी कहते हैं हाँ हाँ सानू तुहाडा पता है, सानू पता है तुहाडा कि तुसी कौन हो, इस पानी के बुलबुले तो वध के कुछ नहीं है। कई गांधे से यू डोंट नो, अभी क्या कहने की यू डोंट नो, महाराज जी कहते हाँ सामने पता तुम कौन हो, दिखता अस्त रक्त प्रेते चाम, इस ऊपर ले रखो कमान, हड्डियां लहू नाड़ियां पिंजरा मिर्ग आग ये गंदगी का एक फैला है, इस उत्ते मान कर दो तो कहते मैं तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हाँ, वो कहते सू पता है तुम कौन हो, बाकी तुम कहते हो कि पता नहीं कि मैं कौन हाँ, वो कहते पता है, जन्म जन्म की इस मन को मन लग गई, अंदर खुदा मैल ही मैल है और कुछ नहीं, मैल ही मैल। अभी कह दें कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हाँ, वो कहते पता है कौन हो, सबको भरिया फूक, हमने भी फूक न सारे भरे गए, वी नो यू। बाबा जी कहेंगे मैं नहीं कह रहा तुम, गुरु बाबा जी कहते असं एग्जैक्टली जानते हाँ कि तुम कौन हो, हमें भी फूक के नाल परे पाए, हड्डियां बिस्ता मास लहू नाड़िया का एक पिंजरा हो, पिंजरे का इतना भी परिभाषा नहीं है, क्या परिभाषा इस पांडे का, इतना को लागे थनका, इतना को थनका लगे तो ये सुख सकता है, मुड़ के द्वारा ये जुड़ता नहीं। इस करके कहते मौत में याद रखो, मौत में याद रखोगे तो तुहाडी अटैचमेंट जो है अपने आप नाल, अपने तन नाल, अपने बाकी तमाम चीजों के नाल, टुटन का तोड़न का जीवन वैराग पैदा करन का एक ही साधन है कि मौत में याद रखो, जो मौत में याद रखेगा उसके भी ही जिंदगी दे फर्दर सवाल आएंगे कि मौत तो बाद की होगा, फिर मैं की बनागा, अदरवाइज एक क्वेश्चन पैदा नहीं होता। तो गुरु की टीचिंग के दूसरा पॉइंट यह आता है कि मौत में याद रखो, हम मैंने दसो ये मत कितने मिल रही है, जो मिल रही है तो दस दी, कोई यूनिवर्सिटी लॉ के कोर्स मेडिसिन के कोर्स के होर किसी कोर्स के सिखाते हैं कि मरना भी याद रखो, बिल्कुल
मतते हैं गुरु की मत, जो असेंशियल चीज़ा गुरु की मत में सिखा लिया जाए दुनिया की किसी भी होर मत दे दायरे दे आंदियां ही नहीं। होर बहुत कुछ है गुरु महाराज सिखा दें, सादा रहो सादे रहो। ये कौन सिखाता है कि सादे रहो, साड़ियाँ लाइफ के अनुभव सोफिस्टिकेटेड हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, बड़ी लग्जरियस हैं, इसका से एक्सपेंसिव भी हैं, एक्सपेंसिव होने करके से स्ट्रेसफुल भी हैं, बहुत सारी एंग्जाइटी का कारण बन रही हैं। और महाराज जी कहते सारे का सारा अवॉइड किया जा सकता है जस्ट बाय लिविंग सिंपल जीवन की। हम उसकी मिसाल सुनो, कबीर साहब का श्लोक है सिंपलिसिटी से, कहते कबीर खूब खाना खिचड़ी या मैं अमृत लोन, कहते मेरे लिए खिचड़ी ही जरा है वो बड़ा खूब स्वादला खाना है, जो सिर्फ लून ही पाया है तो अमृत वर्गा उसका स्वाद है, ना तो बनाने में चिर लगे, ना उस दे नाल फैट प्रॉब्लम होवे, ना उस दे नाल कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होवे, ना ही उस दे नाल ग्रोसरी का बिल वधे। कहते खूब खाना खिचड़ी जाम है अमृत लोन, ना ही वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जेरा रोटी कार नहीं गला कटा दे कौन, जेरा रोटी कहते मांस वाली रोटी नहीं, चला मुर्दार ले आओ छिलो उन्हें बनाओ घर का वातावरण जो है वो मैड़ा करो, फिर जिन्होंने अब खावे वो कदे सामू नहीं खाने। कुदरत ऐसा निजम नहीं है, जो कर्म करोगे उसका फल उसे तरह भुगतना पाएगा। क्योंकि हीरा रोटी कारण स्वाद के बदले मैं किसी जीव का लिया के गला कट दिना हाँ तो उस कर्म का कोई नतीजा नहीं निकलना, उस कर्म का भी तो नतीजा निकलना है। क्योंकि कौन निकले जाए स्वाद के बदले अपना गला कटवावे, कबीर साहब का श्लोक है हीरा रोटी कारण गला कटा दे कौन, कहते मेरी ऐस इन्नी स्वाद की गल बदले मास, हीरा रोटी का मतलब होंगे मास वाली रोटी, कहते मास वाली रोटी के बदले इन्नी गल बदले कौन अपना सियाना बंदा गला कटा है। कहते मेरे लिए सादी सिंपल खिचड़ी ही अमृत वर्गी है, इतों भाव है सादा खाओ सादा जीवन जियो। यह है गुरमत की सिक्ख्या, गुरमत की टीचिंग। फरीद साहब बाणी चाहते हैं फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, जिहड़ा पहले ही बुरा है, जिहड़ा पहले ही बुरा है उसनू होर बुरा बनाना है, उसका बुरा करके तुसी होर बुरा बना दो, बुरा होण दे नाल ओ अपनी आत्मा का नुकसान कर रहा, अपने जीवन का नुकसान कर रहा, अपनी मत का नुकसान कर रहा, अपने जीवन को तबाह कर रहा बुरा होण करके। होर की बुरा उसका करना है, होर उसका बुरा की करना है, अगर होर तुसी उसका बुरा करन लग पे तो फिर उस नाल भी ज्यादा बुरे हो गए। फिरदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, हुण ए बहुत मुश्किल गल है गुस्सा मन ना हंडाए, कौन नहीं चाहता कि मैंने गुस्सा ना आए, पर गुस्सा सानू सबना नहीं आ जाता। यह है गुरमत की तालीम, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगे पल्ले सब कुछ पाए। क्योंकि अगर तू इन्निया की गल्ला कर लें कि तू देही दे अनेक रोगों तो बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रोग सिर्फ पैदा ही गुस्से करके होंगे, पैदा ही इमोशनल प्रॉब्लम करके होंगे। तो शास्त्र जी अब आप जी के सामने मैं दो किस्म की मत अलग अलग करके रखी है, मन भी मत जी सामने इधरों उधरों मिली है, असं उसमें मत समझी बैठे हैं, अपने आप में अकल वाले के मत वाले समझी बैठे हैं, कदे सवाल नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया, शक नहीं की, कदे ये सोचा नहीं कि मत कितों लई भी है, वैसे ही कितों आ गई है, नहीं मत सानू आई नहीं असी वड्डे जरूर हो गए हैं, मत सानू आई नहीं असी मत वाले होण दा भरम जरूर करन लग पए हां, मत सिर्फ इको ही ढंग दे नाल आंदी है, गुरु की मत तू ले आने सब बिना मौजूद देता है। जितनी देर तक गुरु तो असी मत नहीं लेंदे फिर वो इंसान अपनी जिंदगी का हर बोल
हर कर्म हर सोच ओ सोचे ओ करे ओ बोले जो गुरु की मत के नाल बिल्कुल मिलती हो, जो गुरु की मत के जितों हो गए तो वह कह सके आ मैं जो बोल रहा ये मेरे बाबा जी के वचन हैं उन्होंने जो बोल रहा ये मेरे अपने नहीं हैं। मैं मस्कट एक दफा कीर्तन से गया तो कीर्तन के बाद एक सज्जन कह लगे भाई साहब मैं आप जी के नाल एग्री नहीं करता डिस एग्री करता। वैसे भी जितों तक मैंने याद है कीर्तन के दौरान मैं एक लफज भी अपने को नहीं किया, जो कुछ अपने लफ्जों किया उसू गुरबाणी दंक्तियों के नाल कोश की। पहला मेरे ध्यान गुरबाणी की पंक्ति होंगी असल में कोई गल आखना है तो सारी तो गुरबाणी ही बोली गई है तो जो आप जी डिस एग्री करते हो तो बाणी नाल करते हो मेरे नाल नहीं करते, क्योंकि मेरे पास तो मत है ही नहीं, मेरे पास अपनी कोई सियाणत नहीं है, कोई मत नहीं है, मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है। जो भी आखता हाँ वो गुरु बाबा जी की पवित्र पावन बाणी के आखता हाँ तो वह गुरु बाबा जी की मत है। आओ अपने जीवन अपनी मत में त्यागीए, गुरु की मत में लियाइए, गुरु की मत में लियान के नाल जीवन स्वाद आता है, अपनी मत के नाल जीवन के फिक्कापन आता है। वो मैं पंक्ति कह के समाप्त कर लगा हाँ। कहते हैं लाले गोले मत खरी, जिहड़ा गुरु का लाला गोला दास है सेवक है उसकी मत से है सोने वर्गी खरी, क्योंकि गुरु की मत नीची नीची का मतलब बहुत अच्छी, क्योंकि उसके पास गुरु की बहुत अच्छी मत है। ऑन द कॉन्ट्रेरी लाले गोले मत खरी गुरु की मत नीची साची सुप्त सुहावनी, उस गुरु के दास की सुरती जी है बहुत सुहावनी है, बहुत टिकी हुई होगी होगी। मनमुख मत फीकी, जोड़ा मनमुख है उसकी मत फिकी होगी, अच्छा जिसे मत फिकी है उसे सारा ही जीवन फिका होगा, जीवन का हर एस्पेक्ट जो है वो फिका होगा, देश लस होगा, देश ज्यादा होगा। उनकी किस्मत लक्ष्मी हाले मेरी पूरी जो है वो जटलत की थकावट भी नहीं उतरी, पर अगले सूचना में आप जी की सेवा जो है वो होर भी गुरु बाबा जी अपनी आशीर्वाद दें तो उस दे नाल कीती जा सकेगी। समय से रोजाना शाम के दीवान जाना इसे तरह इसे विचार भी जो है लड़ी चलती रहेगी। तो असं इन्होंने दसा दिनों के बहुत सारा गुरु बाबा जी की मत का जो खजाना है वह एकत्र करना है। आप वो अपने नोट्स बनाया करो जाके, आप सिर्फ एक दूसरे के नाल इस विचार की सांझ पाया करो ताकि असी इकट्ठे रल के ग्रो हो सकी। आस्ट्रेलिया के दस दिन कीर्तन के जो लगे हैं ये साड़ी एक किस्म की इनवैसटमेंट हो गए कि इन्होंने दसा दिनों के असं कुछ प्राप्त किया है। यही कुछ समा प्यार मनुष्य जाओ इस समाप्त।

0: खाने करे निवास छुरी बगाए तिन गल ताक तिन घर ब्राह्मण पूरे ना तुना बया मैं उत्साह पूरी रास कूड़ा व्यापार पूर्ण लोर कहे हार सर्व धर्म का डेरा दूर नानक दूर रह
1: मत्था टिका।

ये सावन रहन पंभीरियां क्यों पार वसाये कुंजड़ियां विसाख विच जो जू पर आये बिन गुरमुक्त न होवे बिन गुरमुक्त न होवे।

आशिक नसर दिल दे बेड़े चानन होसी दिल दे बेड़े चानन होसी दूर चना दे चरना निश्चय करना दिल दे बेड़े चानन होसी।

संस्कृत। इसे तरह गुरु महाराज जी ने फारसी की विद्या पंजाब जिला जलंधर तहसील नवांशहर पिंड सलोह के मुंशी पीर मोहम्मद होरां कोलों पढ़ी सी। हिस्टोरिकल टच आनंदपुर के अंदर दो मकतब सन, एक दी अगवाई असलाम दे ए बड़े विद्वान मुंशी पीर मोहम्मद जी करते सन, ते दूसरा जो पाठशाला सी उसकी अगवाई आनंदपुर साहब विखे कृपा राम जी करते सन। गुरु साहब जी इस तरह शस्त्र ते शास्त्र अंदर निपुण सन। महाराज जी तलवार लहरा रहे ने तो संगत बड़िया हैरान हुई कि ए पौने दस बरे की उम्र का बच्चा अज तलवार लैके क्यों खलो गया है। तो आप सारे जानते हो हां पौने दस बरे की उम्र अंदर गुरगद्दी प्राप्त हुई है यतीमी दे आलम अंदर, लेकिन इस परजवानी अंदर अज आसा दी वार दे कीर्तन तो बाद तक कोई शब्द विचार होने सी कोई कथा होनी सी। सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा ए होना सी जिवे के मर्यादा है, पर कथा दी जगह विचार दी जगह गुरमत विचार दी जगह ए तलवार लैके खलो गए ने परजवानी अंदर। अज महाराज दे चेहरे उत्ते कोई उचेचा जलाल है कमाल है। तो महाराज जी तलवार लहरा दे हवमाना अंदाज अंदर शेर वांग ललकार के आखन लगे हिंदुस्तान दे कोने कोने चो जुड़ बैठे हाजरीन जीओ, मेरी तलवार प्यासी है तिश्ना लब है एदे मुंह उत्ते एदियां बुलियां उत्ते एदी तार उत्ते खुशकी तारी हो गई है ते अपनी प्यास मिटाना चाहती है पानी नाल नहीं आबे कौसर नाल नहीं किसे चश्मे दे पानी ते लहरा नाल नहीं किसे नौजवान किसे मर्द दी शारक दे खून नाल मेरी तलवार प्यास बुझाना चाहती है। दूसरे अखर अंदर महाराज जी ने स्पष्ट करके ऐलानिया आख्या मैनू एक सिर दी लोड़ है एक सिर दरकार है। तो समा हो गया है सतसंग जी बस समाप्त कर दे ने सच्चे पातशाह ने जिस वेले तलवार लहरा के सिर दी तलब कीती ते मौत नालों घट सहन नहीं सी अद्धी रात दे नेरे वांगू शां सन्नाटा छाया होया सी कोई ना उठिया। सच्चे पातशाह ने चौहां ही सिमतां नूं तरफां नूं तलवार लहरा के जुबाने मुबारक चो सिर दी मंग कीती कोई ना उठिया पै पीत हो गए। अज गुरु दे चेहरे वल तकिया नहीं जांदा तलवार दिया नजाकता अदामा गमजे निशेब फराज उतराइया चढ़ाइया वेखिया नहीं जांदियां कौन उठे जी। गुरु ने आख्या मैनू एक सिर चाहिदा है। इस चुप तो बाद सन्नाटे तो बाद खामशी तो बाद लोकां दियां नजरां धरती विच गुदियां होईयां सी इस तो बाद एक नौजवान आंदा है छाती बड़ी खुली है कद्दो कामत सुंदर है जरत बड़ी अच्छी है काया दी साख बड़ी सोहनी है शरीर संभालिया होया शरीर संभालिया होया है। पता लगा है कि भाई साहब जी दे राही प्रबंधक साहबान वालों संगतां दी रुचि समझ के मैं सारा लिंक जोड़िया है दस मिनट की बख्शिश और हुई है दास धन्यवादी हैं। तो इस एक्सटेंशन लई संगतां ते गुरु सवारे प्रबंधकां दा धन्यवाद है। पर इस तो बाद दसा मिनटा तो बाद समाप्ति होगी। गुरु साहब जी ने जिस वेले ललकार कीती ते उस वेले मौत वर्गी खामशी सी हौली हौली मलकड़े मलकड़े छड़े हुए रस्ते विच्चे गुरु दे तख्त दे नसी एक नौजवान आके खलो गया वेदियां वेदियां गुरु दियां नजरां इहदे ते टिकियां। महाराज इहदी वल मुखातब होए तू आया है मेरी तलवार दी प्यास बुझाउण लई आया है। बोलिया तां नहीं लेकिन चुप नाल सिर नोड़ाया जिसका मतलब अद्धी हां हुंदा है। फासिट लिखे अल खामोशी नीम रजा चुप भी अद्धी हां हुंदी है सिर नोड़ाया। गुरु साहिब जी ने इहदी वल तकिया ते महाराज आखण लगे नौजवान गर्दन ना चुका सिद्धे ना खलो मेरी गल सुन ते जवाब दे कौन है कित्थों आया है कौन है ते कित्थों आया है। क्योंकि हजारों की तादाद मैं भूल गया 80,000 का इकट्ठ लिखारियां ने इतिहासकार ने खोजिया ने लिखा है इस दिन 80,000 का इकट्ठ से हजूर बोले पर हाथ मानना नजाकत विच

0: पड़पड़ी पहिए पड़पड़िए खास प्रिय जित बस बस प्रिय जित मास प्रिय जित आज प्रिय जित सास नानिकले कैकड़ा लगो मैं चकना चाक महला पहला
1: छिपड़िया तकड़िया बोती भव्या तुन वह बहु पे किया दुख दिया सौ वे जी आया प्रंगिया अन्न खाया सात आया बुध खाया दूजा भाया।

इस ताल दा नाम ध्रुपद है, राग दा नाम तो तुसी सुनी चुके हो। साहब गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी गरीब निवास जी दा उचारिया होया पवित्र शब्द है। राग बिहागड़ा दी वार दे विच्चों ए शब्द है। श्लोक मल्ला चौथा, बिन सतगुर सेवे जी के बंदना जेते कर्म कमाहे, बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावे मर जम्मे आवे जाहे, बिन सतगुर सेवे फिक्का बोलना नाम ना वसै मन आए, नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बद्धे मारिए मुंह काले उठ जाए। चार पंक्तियां दा ए शब्द है। आप जी ने अस्थाई ध्रुपद दी सुनी है, अंतरा हुण लगा के फिर इसे शब्द नूं द्रुत चाल विच तीन ताल विच पढ़ांगे, एन टाइम दे उत्ते समाप्ति करनी है। प्यारी साध संगत, मैं आप संगत जी वल्लों श्रोमणी कमेटी दे प्रबंधकां नूं लख लख वधाई देना, जिन्हां इह अज दा इह समागम गुरमत कीर्तन दरबार रागां दे विच राग दरबार जिस नूं कहिंदे आ उह करवाया है और बड़ा ही उद्यम कीता है। यह बड़ा शुभ कर्म है जो इन्होंने प्रबंधकों ने किया। बहुत ही साड़ी आशा दे उत्ते इन्होंने सही साड़ी आशा पूरी कीती है, आशा नूं चंद लाए ने। गुरु कृपा करे इसे तरह ही इस तरह के प्रोग्राम करवाते रहन, बड़ी खुशी हुई है। सो आप जी हुण अगलिया पंक्तियां दा कीर्तन अंतरा श्रवण करो। बिन सतगुर सेवै ठवर ना पावे, बिन

बनाई राजपथ रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार अजनु समझ रच बिगड़िया नहीं अजहू समझ कच बिगड़िया नहीं भजले नाम

संगत जी हो, ये आप सुनने वाले लोग हैं, कीर्तन करने वाले हैं। कीर्तन एक ऐसी चीज है, प्रभु की कीर्ति करनी और राग ताल गुरबानी और प्यार, उसके बाद जिंदगी में सिखलाई होनी, ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। और सबसे ऊपर है इंसान का जो प्यार है, प्रेम है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने अपने सारे शरीर पे प्रभु

बादशाह आप कृपा की है और असी अपने गुरु अगे बेनती करनी है महाराज धन गुरु रामदास पातशाह धन गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज कृपा करो जिस कम ले जो आप जी ने कृपा बख्शिश की है कृपा करो मेरा दे घर विच आओ साडे ते अपनी दृष्टि करो और बख्शा करो जिवें कबीर साहब कह रहे हैं आप भी सारे कहो जेड़े जेड़े कह सकते हो।